रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।

Rhythm. मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता. सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी.

Beats with Harshadeva only on Radio Channel 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का

सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन
2: रेडियो चुनार।

Hello, hi, assalamu alaikum, adab, and a warm welcome to all of you. What is frequency? Har dil ki dhadkan radio channel 90.4 FM. Enjoy kar raha hai Mazdar show. What's up? What's up? Show ke safar mein main hoon aapke saath Jack Zeus. या दोस्तों याद रखिए रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन और इस धड़कन को धड़काते हैं आप।

0: Roger Zeus. Kom nou ja.
1: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
2: इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में ब्रदर आज का वेदर
1: रेडियो चैनल रेडियो रेडियो चैनल वेदर अपडेट वेदर अपडेट रेडियो चैनल रेडियो रेडियो चैनल वेदर अपडेट
2: जी आज का वेदर होने वाला है सनी फॉर टुडे और गली की तरह आज भी 28 डिग्रीज रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर
1: रेडियो चिना वेदर अपडेट
2: बीच में देर और चांस की गरज बरस हो सकती है बादल थोड़ा सा गरज सकते हैं बट ओवरऑल अगर हम देखें देर इज नो मेजर फोकस फॉर टुडे
1: रेडियो चिना Weather update.
2: अभी के लिए UV index week पर humidity 54%, wind speed 2 kilometers, visibility 4 kilometers. आज का sunrise हुआ 6:26 पर, आज का sunset होगा 6:16 पर. और इस frequency हर दिल की धड़कन याद रखिए आपने follow, share, subscribe करना है radio channel को. Social media हैंडल्स पर फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स या गूगल करें रेडियो चुनाव 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में मजीद मालूमात के लिए प्लीज लॉग इन टू www.radiochunar.com मैं हूँ जॉक्सिस मेरी जान सिरे हट धड़काते रहो

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM. RJ

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है,
1: व्हाट्सएप पे
0: तभी
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।
1: तो रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाता है। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं जो होता है वायरल।

क्योंकि कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं एक स्कैम की, स्कैम जो लोगों के साथ हो रहा है। और लखनऊ में एक बंदे ने इसी स्कैम के चलते 2 लाख रुपए गवा दिए। बताया जाता है कि फेक चालान जो है व्हाट्सएप पर सेंड किए जाते हैं, साथ में अटैच की जाती है एक पीडीएफ फाइल। फाइल पर क्लिक करते ही आपकी जो पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स या पर्सनल पिक्चर्स वगैरह गैलरी जो भी है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और दिक्कत में आ सकते हैं आप। अब इस समस्या का समाधान यह है कि अगर आपको व्हाट्सएप पर चालान मिलता है तो उसे एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से क्रॉस चेक जरूर करें। मे बी कोई ऐसी वैसी फाइल पे क्लिक ना करे। जी हाँ, डबल चेक करना जरूरी है और ये हम सब की मजबूरी है। दुनिया इतनी डिजिटल है, जितना डिजिटली हम सिक्योर हो रहे हैं उतना क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। भैया वायरल था तो व्हाट्सएप पर आ चुका है। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन जॉक्स के साथ मेरी जान सिटी हट दिल का।

0: आरजे
1: ज्यूस।
2: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ।
4: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हरदत के दर्कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है एपियर एज यू आर एंड बी एज यू एपियर। हरदत के दर्कन रेडियो चैनल सिटी हुक

0: मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।
1: Hey, this is RDB in the house, redefined as RD Bomber!

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

सब सर हिलाने शकीने चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे काली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

की धड़कन को धड़का रहे हैं आप और हम। जी हाँ, तारा रम पम पम, मैं हूँ जॉक्स, सब सुन रहे हैं मस्तार शो। व्हाट्सअप शो के सफर में हम दोपहर के 2 बजते हैं, साथ तो है लेकिन नगीने पर नगीनम चुमेश्वरी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहे हैं आपका। वैसे अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि शो का हिस्सा विद्यमान है क्या, तो 8999904904 इज द नंबर, नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। तो ये क्यों कॉल करे, तो व्हाट्सएप या क्यों करे टेक्स्ट मैसेज, तो पाने का रास्ता बात नहीं। भैया बताने वाली बात तो ये भी है कि फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए रेडियो चुनाव 90.4 एफएम को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर आप सर्च कर सकते हैं। अब ये मामला मोहब्बत का है, उल्फत का है, नजाकत का है, रफाकत का है, शफाकत का है, अब इसके कत और नहीं जोड़ सकता। फिलहाल ये बात है कि आपने हम तक अपनी बात पहुंचानी है, तो याद रखिए 8899904904 या आप डीएम कर सकते हैं चौकसी, उसके नाम से मिलूंगा इंस्टाग्राम पर, JOCKXUS इज द आईडी ऑन इंस्टाग्राम, आप डीएम करके शो में शामिल हो सकते हैं। आरिफूर और जुमाना आज गेड़ी मारने निकले हैं डैड के साथ, बच्चे और डैड हमें मैसेज कर रहे हैं, लिखते हैं दोनों बेटियों के साथ आज घूमने निकला हूँ, इन्हें स्कूल छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में सोचा घुमा लाऊं, स्कूल को फोन कराई कि थोड़ा सा लेट होगा। वैसे इतनी बहुत फ्रीडम तो बच्चों को मिलनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, बच्चों का बचपन जो है इसी तरह से हसीन हो जाता है जब आप उनके साथ वक्त बिताते हैं। आजकल के माँ बाप तो ज़्यादातर सोशल मीडिया के साथ ही बिजी रहते हैं, फ़ोन में ही घुसे रहते हैं या काम में लगे रहते हैं, तो उन्हें बच्चों की ज़्यादा फिक्र नहीं होती है। आज सोरी कार नहीं बड़े बापस पुश रो मत, मगर ख्याल जो अच्छे सस्ते था उनकी मोल मुझ पन मोल मुझ को पन मोल मुझ। अगर आज भी मुझे माँ बाप पे टेंशन ना आते भैया, मैं तो मुंह फुला के मुंह का कतई भटोरा बना के बैठ जाता, मैं नहीं मानता, मुझे चाहिए अटेंशन। और ऐसा ही सभी बच्चों के साथ होता है, अब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो उन्हें चाहिए माँ बाप का प्यार, केयर, वो ममता, मतलब वो प्यार का कनेक्शन ज़रूरी है। और इस चीज़ का ख्याल रखना, मतलब आपकी तरह सब रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि यही तो है वो प्यार का रिश्ता जिसे दिल मांगे मोर। थैंक यू सो मच आरिफ और आपकी दोनों बच्चे, गॉड ब्लेस देम हमसे जुड़ने के लिए। तो ये पन कथा इस्तेमाल नहीं, फिलहाल आज हम बॉलीवुड को रिवाइंड करने वाले हैं। बॉलीवुड रिवाइंड है आज का टॉपिक। आज हम उस वेव को फील करेंगे जिसे नॉस्टैल्जिक कहा जाता है, क्लासिक हिंदी सिनेमा एवरग्रीन प्लेलिस्ट, और वो रेट्रो पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करेंगे रे। जी आज हम बॉलीवुड को रिवाइंड करके आप तक पहुंचाएंगे वो पुराने गाने, पुराने नगमे, पुराने गीत संगीत, वो डायलॉग जहां पर ए पुष्पा, मतलब आप समझते हैं ना, हर एक अदाकार का एक अलग स्टाइल, सिक्स पैक नहीं थे, मतलब कलमे इतनी चौड़ी, मतलब कुपरा है इससे ज़्यादा चौड़ी कलमे, और 40-40 साल के बंदे जो कॉलेज स्टूडेंट बनते थे ना, कोई फिल्टर नहीं, कोई ग्राफिक्स नहीं, बस कोर एक्टिंग, प्योर एक्टिंग स्किल्स। आज हम उसी बॉलीवुड को टटोलने वाले हैं और उसी बॉलीवुड के बारे में बात करने वाले हैं। तो बॉलीवुड रिवाइंड में क्या होगा खास, हम है ना आपके पास, आप और हम मिलकर शो को आगे बढ़ाएंगे जब आप अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे, क्या है आपके व्यूज, इमोशंस, थॉट्स, हमें जरूर बताएं। 8999904904 नंबर, यस इज 8999904904। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव, मेरे यार सेट हक धड़काता रहा।

0: चुप्पे। रोकी सूखी जो मिले पेट भरने के लिए और काफी दो गज़ जमी जीने मरने के लिए। अबे कितना मांग रहा है मुंगीलाल? अपनी साइज के हिसाब से मांग रहा है क्या?
1: आ,

0: Celsius.
1: Dosto enjoy kërë më zdarë që wasë për wasë për shë. A zi, me më gjakë zë sërë që gajë sa më nekli apë në kësë më të këmë që nekli 8-9-9-9-0-4-9-0-4 आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज साथ ही याद रखिए डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मिलूंगा जॉक ज्यूस के नाम से JOCKXUS ये है मेरी आईडी आईडी पे डीएम किया है साक्षी ने लिखती है साक्षी सर आपके स्टेशन के बारे में पता चला जम्मू से हूँ और जम्मू में बैठे बैठे ऐप के थ्रू आपका स्टेशन सुनती हूँ एंड मजा आता है बाकी एफ एम भी सुनती हूँ लेकिन रेडियो चुनाव इज माई फेवरेट साक्षी थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू यू ही प्यार देते रहे रेडियो चुनार को और भी लोगों से रिकमेंड करें ताकि रेडियो चुनार की जो रीच है हमारी जो फैमिली है और फले फूले और आगे बढ़े जी हाँ आप भी हमारे साथ जुड़े याद थो 8899-0494 इज द नंबर आज हम बॉलीवुड को कर रहे हैं रिवाइंड और बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म इंडस्ट्री और अगर हम देखें तो तकरीबन 1000 के करीब जो है मल्टीपल लैंग्वेज में मूवीज रिलीज करता है बॉलीवुड और अगर हम बॉलीवुड को पीछे लाइक पीछे पीछे पीछे और भी पीछे जाए 1913 में पहली फिल्म रिलीज हुई थी राजा हरिश्चंद्र और फिल्म का ऐसा था ना कि मेल जो है फीमेल्स का रोल कर रहे थे क्योंकि उस टाइम बॉलीवुड की इतनी डोमिनेंस इतनी दबदबा नहीं इट वाज द फर्स्ट मूवी और लोग रख कदम फूक फूक कर नादान वाली चाल चल रहे थे और वही अगर हम लॉन्गेस्ट मूवी की बात करें तो दैट्स एपिक एलओसी करगिल जिसके पास लॉन्गेस्ट मूवी एवर का रिकॉर्ड है 4 घंटे 25 मिनट की है ये मूवी और अगर इंडियंस की बात करें तो तकरीबन 2.7 बिलियन मूवी टिकट्स हर साल सेल की जाती है और वही अगर हम देखें तो भैया म्यूजिक की भी खासा डोमिनेंस है एवरी मूवी कम्स विद ट्रैक्स चाहे सुखी चाहे दुखी गाने तो हर बॉलीवुड मूवी में होते ही हैं और एक लव एंगल तो ज़रूरी है लेकिन अगर हम आज की मूवीज से कंपेयर करके देखें तो रियलिस्टिक होता था सिनेमा अब ऐसा मतलब सोशल मैसेज होता था साथ ही साथ अदाकारी भी इस तरह से होती थी कि बिल्कुल एकदम नेचुरल उस टाइम इतना ग्राफिक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था लेकिन अदाकारी इस तरह से निभाई जाती थी कि लोग एक्टर्स के पीछे दीवाने बन के घूमते थे आज भी हैं लेकिन आज की अगर हम बात करें तो रिटायर होने का नाम नहीं लेते एक्टर्स जबकि पुराने मूवीज़ में अगर हम देखें तो मतलब रियलिटी दिखती थी जैसे दिलीप कुमार और फरीदा जलाल मतलब मूवी में बहन बोल दिया तो पूरी जिंदगी उन्हें बहन मान के ही आगे बढ़े मतलब ऐसे कितने सारे किस्से हैं जो हमें जानने को मिलते हैं बॉलीवुड को खास बनाते हैं वही अगर हम आज की बात करें तो सेम वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम शाहरुख खान जब उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ बिच्छू गैंग वाला जो रोल था मतलब दैट वाज ऐश्वर्या परफॉर्मिंग एज सिस्टर टू शाहरुख खान लेकिन उस स्टीरियोटाइप को उस थॉट को ब्रेक करने के लिए उन्होंने फिर इश्क मीना वाला गाना किया सो दैट पीपल विल नो कि दिलीप कुमार को जो शाहरुख खान के साथ कंपेयर किया जाता है लेकिन ऐसा कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं शाहरुख खान
0: yes.
1: अब अपनी अपनी मर्जी है लेकिन रेट्रो बॉलीवुड इज स्टिल देयर वो जो पुराना क्लासिक बॉलीवुड है आज भी पसंद किया जाता है आज भी वो अदाकारी आज भी कितने सारे लोग हैं जो मिमिक करके पुराने अदाकारों को पुराने एक्टर्स को अपनी रोजी रोटी चलाते हैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं जी हाँ क्योंकि मस्ती और जो आपके चेहरे पर हंसी है हस्ती उसे हम तक पहुँचाए अपने व्यूज इमोशंस थॉट्स हमें बताएं 8-8-9-9-9-0-4-9-0-4 बातचीत जारी है बात कर रहे हैं आज बॉलीवुड रिवाइंड की आप बने रहें सुनते रहें हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें मैं हूं जॉक ज्यूस ये है रेडियो चैनल 90.4 एफएम स्टे हुक्ड मेरी जान

Beats with Harsh Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

सूर्य रिजनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। जी हाँ, टेक वर्ल्ड से अपडेट से लेकर बॉलीवुड की तड़कती फड़कती खबरें सब पहुंचाएंगे आप तक। आप बने रहें, सुनते रहें और दिल की धड़कन को धड़काते रहें। मैं हूँ चॉक्स, धड़काते रहो।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Tech Talks with RJ Zeus.
1: The story of Channel 90.4 FM show was a WhatsApp Yoga segment, Tech Talks.
2: Tech Talks,
1: Zeus ke saath aaiye karte hain tech updates ki baat. टेक टॉक्स में आइए आपको बताते हैं कि एप्पल पे इज फाइनली एक्टिव इन इंडिया। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन फाइनली जिस चीज का इंतजार इंडिया कर रहा था वो इंडिया में आ चुकी है। NFC के थ्रू काम करने वाला ये एप्पल पे एक्सिस कार्ड्स के साथ ही अभी अवेलेबल है। दैट मीन्स ओनली एक्सिस कार्ड्स जो है एक्सिस बैंक के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स वो फंक्शनल है। एंड मोर ओवर एनीथिंग बताया जाता है दैट प्रेजेंटली मोर बैंक्स विल ज्वाइन एप्पल पे सून। नाउ द पॉइंट इज, क्या इंडिया में UPI का डोमेन इस्तेमाल करने वाले लोग एप्पल पे को एक्सेप्ट करेंगे? वेल,

सुनने के लिए और स्टेटस के लिए एप्पल वाले क्या नहीं करते। नाउ पॉइंट इज विल एप्पल पे सर्वाइव इन इंडिया और नॉट, वो तो देखेंगे हम भी और आप भी। फिलहाल इफ यू हैव एंजॉयड दिस ट्रैक इज डेडिकेटेड टू यू, इट्स अ ट्रैक बाय राघव जैसे फ्रेंकी मैक्स और मैं हूं जॉक्सिस। यू आर ट्यून्ड इन टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 एफएम। बातचीत जारी है आपकी और हमारी, यारी है 12 तक की पूरी तैयारी है, हर दिल की धड़कन को धड़काता रहे, सुनते रहे। सो व्हाट्स अप जॉक्सिस, रिएक्ट मेरी जान, धड़काते रहो।

0: Jesus.
1: जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Asia Zeus. Kung ano
1: Bollywood News.
2: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम एंजॉय कर रहा आप मजेदार शो सेगमेंट बॉलीवुड न्यूज।
1: बॉलीवुड न्यूज
2: जी हाँ, ये बात करते हैं बॉलीवुड की ट्रेंडिंग खबर की। सलमान खान एक ऐसा अदाकार जिसे कौन नहीं जानता, और वही अगर हम बात करें तो सलमान खान ने बिग बॉस के अंदर शर्ट की अवतारी पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम ही हिला डाला। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप में बॉलीवुड न्यूज में ये आपको बता दें, सलमान खान इज वंस अगेन इन द ट्रेंडिंग सेक्शन। रीजन आप सभी जानते हैं कि सलमान खान ने इससे पहले राजपाल यादव को जेल से निकाला था। नाउ सलमान खान गेव हिम अ चांस टू एक्ट इन हिज फिल्म मॉन्स्टर एंड जस्ट सिंपल थिंग, भाईजान इज मोर देन यू थिंक। और इस फ्रीक्वेंसी पर आप बने रहें, सुनते रहें हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें। शो व्हाट्सएप, मैं हूं जॉक्सी, उस मेरी जान सिटी हक्ट।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: इसे नहीं मानने दो। ये क्या हो गया था?
1: तो दोस्तों इसी ट्रैक के साथ आज के लिए इजाजत, और इजाजत इस चीज की क्या

0: हम जा सके तभी तो घर आएंगे। जी हाँ, इजाजत दीजिए और इस बात का वादा है कि फिर आपसे मुलाकात जरूर होगी। और रेडियो चनार सुनते रहे। जी हाँ, आ रही है कुछ ही देर में म्यूजिक की थानेदार आरशे दीवा।
1: किसकी मौत के बारे में सोच रही थी?
0: जी हाँ, चनार बीट्स शो का नाम बीट्स ऑन रिपीट आप एंजॉय करने वाले हैं कुछ ही देर में। मुझे इजाजत दें, कल मुलाकात होगी। टिल वी मीट अगेन, कीप योर हेड्स हाई, वॉक टॉल एंड ऑलवेज रिमेंबर द डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश, मा सलामा।

देखिए इसको डिनाई भी कौन कर रहा है कि मुझे जरूरत है तो मेरी पूरी वाइफ और ट्राइब की, और मेरी पूरी वाइफ को अभी जो है मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ मिलने वाला है। सोचना बीट्स ऑन रिपीट बॉस, ये वाइब एंड ड्राइव है हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 91.1।

0: देखिए बदलने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। अब देखिए मौका दस्तूर मैं हुजूर आपके सामने जब ये चीज़ रियलाइज मुझे होता है कि इट्स नॉट अबाउट कि यू आर लिसनिंग मी, इट्स अबाउट आप ज़रूर मेरी तरह जैसे मैं महसूस करती हूँ मेरी पूरी वाइब और ट्राइब मेरे पास है, मुझे सुन रही है। और ज़रूरी है कि ये कनेक्शन हमें फील भी होना चाहिए। इट शुड बी लाइक कि खाली मैं बोल नहीं रही हूँ, मेरा बोलना आपके कानों तक तो पहुँच रहा है, बट ये कि आप महसूस भी कर रहे हैं कि ये बात ही सच में आपकी है और कोई कानों में आवाज़ दे रहा है आपको कि अभी टाइम है, अभी बोलता हूँ, क्या पता आगे बोल ही ना पाओ। मुझे बोल दीजिए अभी मैं पहुँचाऊँगी आपकी आवाज़ वहाँ वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़। 88999904 शो चुनार बीट्स, आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM
1: और जीसस, और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

शो चुनाव बीच स्टे सारी बातें हो रही है, ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में बात हो रही है। अभी शो का ऐसा बन सकते हैं 8999 4904 पर। और उसके अलावा आप अपनी दिल की बात कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, कॉल तो नंबर तो यही है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्लोबल ट्रेंड्स जब होते हैं, और ग्लोबल ट्रेंड यहाँ पे AI, डिजिटल इंटीग्रेशन, सस्टेनेबिलिटी, इम्पैक्ट क्या है, इसे उससे पता चलता है कि क्या चीज़ है जो पूरी दुनिया में चल रही है और कौन सी सी चीज़ है जो बदलाव आया है, और डिजिटल इंटीग्रेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी सोसाइटी।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

वो बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखते।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
3: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
3: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
2: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
3: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन
1: रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक।
2: Chinar Beats with RJ Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: हाय, मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद, तो बहुत डर लगा है। हे वैष्णो देवी, अगर सब कुछ अच्छे से हो गया ना, तो मैं विजय के साथ आपके दर्शन करने आऊँगी।

0: दीदी
1: हाँ
0: भैया आपको आई लव यू कह रहे थे
1: उससे आपा

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हेलो हेलो हेलो साहिबान कदरदान,
1: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
2: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

0: ओके बाय।
1: हाय, मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को करार आ जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
4: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप

0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम। रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: सुहानी शाम।
1: दबी यादें महक जाती
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल 90

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: マネーカ
1: ー。वो आ गया, देखो, देखो वो आ गया।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

सूरज, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प प म रे

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना ब...

0: ईश्वर बचाओ, ओ मुर्गे, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी, हो नटखट, हो खटपट, हो पनघट, हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय।

0: ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, तारारारा, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हमसे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।